मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम। आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा पर, निर्वाणा नाइट्स मेरा शो चलता है। 7 से 10 मैं रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपकी मूड को रिफ्रेश। अब वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, जिसका नाम है बॉलीवुड, है ना। एंड माया नगरी मुंबई यानी बॉलीवुड की तरफ अब रुख करते हैं। रणबीर कपूर के फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। उनकी आने वाली बहुत बड़ी फिल्म रामायण का ट्रेलर जो इस हफ्ते रिलीज होने वाला था, उसे आगे बढ़ा दिया गया है। मेकर्स ने बताया कि सोनी पिक्चर्स के साथ एक बहुत बड़ी ग्लोबल डील हुई है, इसलिए अब ट्रेलर बिल्कुल नए और ग्रैंड तरीके से पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा। थोड़ा इंतजार और सही, पर मजा जो है वो दोगुना होने वाला है। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही अच्छा गाना जो कि प्ले करने जा रहा हूं सिर्फ आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: up your spider sense because Spider-Man Night is here with the North Carolina Courage this Friday, July 31st. Bring the whole family to First Horizon Stadium, where Courage will face off against Orlando Pride at 8 p.m. It'll be a super fun night for fans of all ages, with Spider-Man themed activations, fun for the little ones, and a free Spider-Man Funko Pop for the first 500 fans to arrive. Don't miss Spider-Man Night with NC Courage. Tickets at tickets.nccourage.com.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड हमारे एक लिसनर है राहुल, हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर है, बहुत बार हमें टेक्स्ट करते रहते हैं, तो कैरी से ये बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि वो कह रहे हैं कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, वो अपने पति अपनी वाइफ प्रीति के लिए एक गाना जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं। राहुल और प्रीति, हमारे नायरा के पूरे टीम की तरफ से शादी की सालगिरह की आपको बहुत बहुत बधाई, आप दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे। आज के आपके इस खास मौके पर रेडियो नायरा सुनाने जा रहा है आपके लिए, जो कि राहुल ने फरमाइश की है स्पेशली। राहुल ने मुझे आई गेस दो दिन पहले ही टेक्स्ट कर दिया था और कहा था कि पराग ये ऐसा है कि भाई एक अच्छा गाना तो हम सुनना चाहते हैं, हम आपके रेगुलर लिसनर्स भी हैं दोनों भी, सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और अगला गाना राहुल एंड प्रीति के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: प्रीति के लिए है। होप सो प्रीति जी को ये राहुल जी का तोहफा जो है वो पसंद आया हो। और राहुल जी क्या गिफ्ट लिया है वैसे आपने प्रीति जी के लिए, थोड़ा हमारे साथ भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट कर दो, हम डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी बताना चाहेंगे। वेल एंजॉय योर डे एंड एंजॉय करो यार, मतलब अच्छी बात है ना यार, आज आपके वाइफ का बर्थडे है एंड वीकेंड भी है, आपको छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सो बहुत अच्छी बात है, आप यू ही एंजॉय करते रहे। एंड होप सो आपने वैसे कहा था मुझे कि आप बराबर ट्यून इन करोगे, एंड मैंने आपको एक टाइम भी दिया था कि इस टाइम पर मैं प्रीति जी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहूँगा जो आपने फरमाइश की है। एंड होप सो कि आपने गाना सुना है, अगर आपने गाना सुना है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दीजिए एंड उसके बाद आप थोड़ा बता सकते हैं आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या गिफ्ट दिया है ना। सो पेश करने जा रहा हूँ अगला ही गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

आपने एंजॉय किया ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपकी मूड को रिफ्रेश। अब रात धीरे धीरे गहरी हो रही है एंड इस संडे की शाम को संडे की शाम भी धीरे धीरे मज़ेदार हो रही है ना। कल मंडे है, एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। पिछले हफ्ते जो भी खराब हुआ उसे भूल जाइए, कल सुबह एक नई शुरुआत कीजिए पूरे जोश के साथ। आप सब बेहद मजबूत है और सब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखें, ऑनेस्टली मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहे एंड सब कुछ हो जाता है यार। आप बस आगे बढ़ते रहो, इतनी मेहनत करो ऑनेस्टली कि आप भी अपने आप को कभी पीछे ना ला पाओ। सुनते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड इंडिया स्टोरी। मैं बता रहा था ना, द इंडिया स्टोरी। ओके, द इंडिया स्टोरी के बारे में हमने बात करी थी, टॉपिक भी बहुत अच्छा था एंड काफ़ी हमने कुछ दिनों पहले मैंने जिक्र किया था इस मूवी का। तो कल रिलीज़ हुई द इंडिया स्टोरी एंड आज सैटरडे को थिएटर्स में ये मूवी को बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म हमारे खाने पीने की चीज़ों में कीटकनाशकों की मिलावट के काले कारोबार को उजागर करती है और आज वीकेंड पर दर्शक जो है इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। टॉपिक जो है, मतलब पहले कहा था मेकर्स ने कि ये टॉपिक जो है वो आम आदमी को पता चलने के लिए है कि एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है और क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, ताकि जो जनता है वो अलर्ट हो जाए। तो वेल, काफ़ी अच्छी फिल्म जा रही है एंड ऐसे टॉपिक को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

टू एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपकी मूड को रिफ्रेश। मैं ये कह रहा था कि यार संडे का माहौल है, मौसम भी काफी अच्छा है, कैसे चल रहा है आपका दिन? अगर संडे को भी आप मंडे के बारे में सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। प्लीज ऐसा ना सोचिए यार, मंडे तो आएगा ही, काम सबको है, सब लोग काम भी करेंगे, लेकिन मंडे की ओवर थिंकिंग में संडे का दिन खराब हो जाए ये तो लाजमी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अपनी इस प्यार भरी शाम को अपने लव वंस के साथ एंजॉय कीजिए। एंड यार मतलब काफ़ी मौसम अच्छा हो रखा है, एंड उसमें अगर आप आपके लव वंस के साथ हो या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो तो एक सुहाना मौसम के लिए ये गाना तो बनता है ना। अगला सुनते हैं लगाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

कहना था वाकई में काफी ब्यूटीफुल। अब वक्त हो चुका है हमारी एक कहानी सुनने का। तो ये कहानी दो दोस्तों की है। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे। काम के चक्कर में दोनों की लाइक बातचीत भी जो है यूजुअली कम होने लगी। एक दिन आशीष जो है वो परेशान था, उसका बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था। उसने सोचा कि उनके दोस्त सुमेध को पूछा जाए, उन्हें फ़ोन करे, क्योंकि बहुत सालों से बात नहीं हुई थी। क्या आशीष फ़ोन लगाने पर सुमेध उनकी मदद करेगा? इस कहानी का अगला हिस्सा सुनेंगे इस प्यार भरे गाने के साथ। आप बनिए रहेगा एंड आप सुन रहे हैं, ट्यून किया है आपने रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना, वो मेरा हमशक्ल.

जी हाँ, आपका तहे दिल से वेलकम, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो कहानी में आगे क्या हुआ? आशीष ने डरते डरते सुमेध को फोन मिलाया। सुमेध ने फोन उठाते ही कहा, अरे भाई तूने इतने दिनों बाद याद किया, आवाज इतनी उदास क्यों है? आशीष ने रोते हुए अपनी सारी परेशानी बता दी। सुमेध ने सिर्फ एक बात कही, तू चिंता मत कर, शाम तक पैसे तेरे अकाउंट में होंगे, पैसे तो आते जाते रहेंगे, तू तो मेरा भाई है। दोस्तों, सच्ची दोस्ती वही होती है जो वक्त और दूरी से कभी कम नहीं होती। अगर आपका भी कोई ऐसा पुराना दोस्त है तो आज ही उसे फोन लगाए। एंड यू नो, भला ही दोस्ती में कम्युनिकेशन ना हो या फिर कम हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो दोस्त काम में आता है वही असली दोस्त होता है। तो एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

एंजॉय किया आपने गाना। गाना था काफ़ी बेहतरीन। और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून का तो नहीं है लेकिन बहुत मायने रखता है। चलो रिश्ते की बात निकली है तो एक शेर और सुनाना चाहूँगा। पेश है, रिश्ते कभी जिंदगी में खास नहीं होते, रिश्ते कभी जिंदगी में खास नहीं होते, जो खास होते हैं वो कभी दूर नहीं होते। सही कहा ना, जो खास होते हैं वो कभी दूर नहीं होते। अगर दिल में जगह पक्की हो किसी के लिए, थोड़ा गौर फरमाइएगा, अगर दिल में जगह पक्की हो किसी के लिए तो दूर रहने वाले भी कभी अलग नहीं होते। बहुत सही बात है यार, मतलब होता है यार, कितनी सादगी है ना इन लाइनों में। अपनों को हमेशा संभाल कर रखिए एंड अपने ही होते हैं यार जो काम में आते हैं। काम में बोलने से अच्छा जो अपने होते हैं। सुनते हैं ना अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

मतलब जो शेर हमने सुना वो रियल लाइफ में भी काफी मायने रखता है। आप सुन रहे हैं रेडियो दायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आज पराग। सात से दस में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। थैंक यू सो मच टू ऑल माई लिसनर्स इतना सारा प्यार देने के लिए, रेडियो दायरा के लिए, निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे इस रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है रेडियो नायरा एंड डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को। आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। शर्त बस इतनी है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका नेटवर्क रहना चाहिए अच्छा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

वेलकम बैक टू एवरीबडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड यार ये 7 से 10 का टाइम कैसे बीत जाता है आपके साथ बातें करते करते पता ही नहीं चलता। तो उम्मीद है आपको आज की खबरें, शायरी और कहानी जो है वो पसंद आई होगी। कल शाम को ठीक 7 बजे मैं फिर हाजिर रहूंगा आपके पसंदीदा शो रेडियो नायरा पर जो आता है, नाम है निर्वाणा नाइट्स। एंड यही कह रहा था कि अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से सोइए। एंड अब तो वक्त हो चुका है यार अपने लोगों के साथ, बहुत लोग डिनर कर रहे होंगे, कोई लोग कल की तैयारी कर रहे होंगे। मंडे जो आ रहा है ना मोटिवेशनल मंडे जिसे हम कहेंगे, मोटिवेट होके काम करना है, सारी चीज़ें हो जाती है। तो चलिए मेरे सभी प्यारे लिसनर्स को गुड नाइट एंड शब्बा खैर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: टकराएं तो मामूली पत्थर भी बोलते हैं, अरे टकराएं तो मामूली पत्थर भी बोलते हैं, और पत्थर की जुबान वाले भगवान नहीं बोले।
1: ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए आपसे बोले हुए, बातचीत किए हुए। बेशक वक्त ने हमें थाम रखा है कि अगर बोलना भी चाहें तो वक्त नहीं होता। बड़ी मुश्किल से हमें हर इतवार मिलती है, लेकिन ये भी किस्मत की बात है कि हमें हर इतवार मिल जाती है आपसे बातचीत करने के लिए। वी आर योर होस्ट अफरोस्ता जॉन कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज रेडियो नायरा की पेशकश गीत बाजार।
2: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
3: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: Charanjit Lal Ji and Kanchan Lal Ji ki farmaish par ye nagma pesh kiya gaya tha. Aur agli jo farmaish hai wo muhtarma ज्योति करीर साहिबा की है, और बहुत खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत नगमा है अपने जमाने का। जिस रंग में मिला दो वो रंग है उसी के। देखिए साहब क्या खूबसूरत बात कहने की कोशिश की है कि जिस रंग में मिला दो वो रंग है उसी के, पानी घटा और बूंदें हिस्से हैं जिंदगी के।

बरसात चाहे जितनी हो पत्थर की जवानी है। अरे बरसात चाहे जितनी हो पत्थर की जवानी है, और पानी की रवानी से ये तेज कहानी है।

बादल के बरसने से ये दिल मेरा कहता है, अरे बादल के बरसने से ये दिल मेरा कहता है, जाऊं कहीं नहीं मैं, गुजरे तुम्हारे पास।

0: बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, आंखें बरस रही हैं, जल थल है मेरी क्यारी। रियाजुर रहमान का कलाम था, अदनान समी की मौसीकी थी और आवाज़ भी अदनान समी और आशा भोसले की थी। वाह, सरगम फिल्म का नाम था, जो पाकिस्तानी फिल्म 1995 में बनी, जिसमें आशा भोसले ने भी गाया। और फरमाइश आई थी मोहतरम जनाब योगेंद्र लाल साहब की कराची से, पाकिस्तान से। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाअत फरमाया, मंसूर अनवर का कलाम था, मौसीकी थी निसार बज़मी की, फिल्म का नाम था सच्चाई, पाकिस्तानी फिल्म 1976 में बनी थी, महनाज बेगम की आवाज़ के साथ ही नगमा था। और फिर फरमाइश आई थी मोहतरमा फहमीदा बेगम की, ये आई है मिसिसागा से, ओंटारियो यानी कनाडा से। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाअत फरमाया, राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी का कलाम था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी, फिल्म का नाम शोर, 1972 की ये फिल्म थी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में ज्योति करीर की फरमाइश पर मानसून का वो वेलकम कर रही हैं, जिसके मौके पर ये नगमा उन्होंने भेजा।
1: एंड फर्स्टली द नेक्स्ट रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम कार्तिक पटेल, ही'd like to hear something in the voice of Mukesh from the 1961 film Sanjog. And Farida Sheikh also reminded us that it was Mukesh's birthday just a few days ago on July 22nd. And we celebrate Mukesh's birthday, by playing songs by Mukesh. And Farida Sheikh ji gave us a number of good selections. We'll be playing more Mukesh birthday songs next week. और अफरोज जी, जो शेर आपने सुनाया था, एक बार और सुना दीजिए।
0: बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, आंखें बरस रही हैं, जल थल है मेरी क्यारी।

0: करीब आओ शिकायत नहीं मुझे, अरे कितना करीब आओ शिकायत नहीं मुझे, बेबाक रवैयों की आदत नहीं मुझे। खातिनो हजरात, कलाम था A.M. तुरेज का, संजय लीला भंसाली की मौसिकी थी और फिल्म का नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। अर्चना घोरे की आवाज़ के साथ ही नगमा आया था मोहतरम जनाब चरणजीत आलियन मोहतरमा कंचन लाल जी की जानिब से, और अब मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा अपना सवाल लिए खड़ी हैं और मुझे दिखा रही हैं कागज़ में, ये है तुम्हारे इम्तहान का पर्चा। तो पर्चा इम्तहान का क्या है मैं पढ़ सकता हूँ, मगर आप गा कर सुनाइए अपनी आवाज़ में, हमें गैस करना होगा कि कौन से नगमे की फरमाइश आप कर रही हैं। अब तो आप मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं, तो समात फरमाइए पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की आवाज़।
1: रूठी हुई हो तो अब मान जाओ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, हजार कोशिशें की तुमने मगर छुप न सके। पूर्णिमा गुप्ता जी समात फरमाइए, देखिए कि ये शेर आपकी आपकी फरमाइश से कैसा करीब है कि नहीं है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमने आपका इम्तिहान गैस कर लिया। हजार कोशिशें की तुमने मगर छुप न सके, मेरे हुनर से शहर और नगर छुप न सके।

जो सारे सितारे तुम्हारे हुए हैं। समात फरमाए कि जो सारे सितारे तुम्हारे हुए हैं, तो शौरा के क्या इस्तारे हुए हैं। असद भोपाली का कलाम था। वाओ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी 1963 की फिल्म, जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, पारस मनी। फिल्म का नाम था पारस मनी, लता मंगेशकर की आवाज में। मोहतरमा फरीदा शेख साहब, आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, जैसे कि अगली फरमाइश आपकी किशोर कुमार की आवाज में। वाह, फिल्म का नाम हम सब उस्ताद हैं, 1965 की ये फिल्म है। अगर प्यार बांटो तो ये सोच लेना। अभी आपने सोचा है, कह तो देते हैं आपके प्यार को बांटो ये वो सब, लेकिन ये नहीं सोचते, अगर प्यार बांटो तो ये सोच लेना, मिले सबको प्यारे बराबर का हिस्सा। यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

खुशबू भरे शिकारे डल लेक की नदी में। आप जानते हैं कि डल एक झील का नाम है श्रीनगर में। खुशबू भरे शिकारे डल लेक की गली में, सौरंग भरे हुए हैं कश्मीर की गली में। इस पर मुझे फिल्म जंगली का वो सीन याद आ जाता है जिसमें के हीरो साहब नाराज हो जाते हैं, यानी के शम्मी कपूर और हीरोइन जिनकी पहली फिल्म थी सायरा बानो, वो उन्हें मनाती हैं और वो नाराज होकर आगे बढ़ते जाते हैं। 1961 की फिल्म थी जंगली, जिसका ये नगमा है।

इसी फिल्म का एक और नगमा आप समाप्त फरमाएं। इसके बारे में ये कहा जाता है, पता नहीं कहां तक सच है क्या है, कि किसी हिंदुस्तानी शख्स ने ये नाम चुना yahoo.com क्योंकि उनके पिताजी को जंगली फिल्म बहुत पसंद थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई इसका नाम याहू रख दो। याहू, याहू।

पागल सा हो रहा हूं कश्मीर देखकर। समातर्म है कि पागल सा हो रहा हूं कश्मीर देखकर, ना देखे हुए ख्वाब की ताबीर देखकर।

0: दिल में।
1: मेरे दोस्तों, फिल्म जंगली में जो एक नगमा था, मैं कश्मीर की कली हूँ मुझसे ना रूठो बाबूजी, उसी नगमे की लाइन पर एक और फिल्म बनी जो शायद 3-4 साल के बाद कश्मीर में, इशारों में कैसे किया शहर दिखा। अरे इशारों में कैसे किया शहर दिखा, और दिल ले लिया है कैसे अपना हुनर दिखा।

वापस आना एक बहाना, अरे वापस आना एक बहाना, इसे कौन ठुकराएगा। अरे वापस आना एक बहाना, इसे कौन ठुकराएगा। और प्यार से जो आवाज लगाए, कौन भला रुक पाएगा। यू आर लिसनिंग टू गीत बजार।

दोस्तों ये तकरीबन 70s की बात है कि जब हमारा इंडिया में एक बैंड हुआ करता था और हम उसको चलाते भी थे और मैं उसका ओनर नहीं था, लेकिन ये बड़ी पुरानी बात है, अंडरग्रेड था मैं अलीगढ़ में ही। तो हमारे दोस्तों ने सबने डिसाइड किया कि कश्मीर चला जाए, क्या ख्याल है, और सबने चुना कि अच्छा अफरोज को पहले भेजो और वो तैयारी करे। तो खैर एनीवे तो मैंने हाँ कर दी और सब ने अलीगढ़ से मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। वहाँ कश्मीर के रास्ते में एक मैंने गीत लिखा जिसकी धुन बनाई और खुद ही लिखा। आए थे कश्मीर सोचा दिल बहल तो जाएगा, अरे आए थे कश्मीर सोचा दिल बहल तो जाएगा, और थे अकेले पहले से अब और अकेले हो गए।

ये हकीकत है वाकई कि जब तक आपके साथ आपका महबूब आपका लव्ड वन ना हो तो कश्मीर का मजा कुछ नहीं। तन्हाइयों के अलावा वहां कुछ भी नहीं रह जाता है। फिल्म आरजू का ये सीन कौन भुला सकता है भला, जिसमें हीरोइन अपने महबूब के लिए गीत गाती है और उसमें हवाले देती है कि तेरे बिना ये चिनार के पत्ते, ये झील और सब के हवाले आप अगर गौर से सुने तो बहुत अच्छा लगेगा।

हंस खेलने की जिंदगी रोकर गुजार के, अरे हंस खेलने की जिंदगी रोकर गुजार के, जब तक बड़े हुए गए दिन भी बाहर के।

1975 की बात है, एक फिल्म आई थी आपकी कसम। उस जमाने में मैं अंडरग्रेड था और नई नई हमारी किसी साहिबा से दोस्ती हुई थी, नाम नहीं लूंगा उनका। तो उसका वो गाना हमें खींच लाया फिल्म के अंदर, फिल्म देखने के लिए। ओह, पहली बार किसी लड़की को अपने साथ लेके जाने का एक अजब ही फीलिंग होती है, एक अजब ही बचपने की उमंग होती है जो हम फील नहीं कर सकते। और पहली बार मैंने किसी के लिए अपनी जेब से टिकट खरीदा और समोसे दिखाए। ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

किस बाग में आया है काले स्याह भंवरे। समाज फरमाए, किस बाग से आया है काले स्याह भंवरे, दिल जीतने से पहले तन को न हरा दीजो।

1965 की फिल्म जब जब फूल खिले का एक मंजर बहुत अच्छा है कि नंदा जो है यानी हीरोइन फिल्म की नंदा हाउस बोट की छत पर एक गाना फिल्मा रही थी, अभी प्रैक्टिस चल रही थी आंखें बंद करके। तो उसमें क्या हुआ, उस फिल्म का हीरो जो मल्लाह था हाउस बोट का, वो छुपके उसकी एक्टिंग देखना चाहता था। तो देखने के लिए उसने सीढ़ियों में से दूसरी सीढ़ियों से निकल कर आया और बिल्कुल उससे छुपके बैठ गया। लेकिन जैसे ही गाना ख़त्म करके उसने निगाह डाली तो एकदम से उसे सरप्राइज हुआ, और आप उसे देख सकते हैं फिल्म के अंदर भी। बल्कि डायरेक्टर ने कहा जाने दो कोई बात नहीं।

इसी फिल्म का मंजर, शशि कपूर का और दर्द भरी आवाज मोहम्मद रफी की, और दर्द भरे हमारे गीत बाजार लिसनर्स में से एक दामोदर पांडे बनारस रामनगर से इसकी फरमाइश भेज रहे हैं। इस नगमे की दो लाइनें मैं कभी नहीं भूलता हूँ, बागों में जब जब फूल खिलेंगे तब तब ये हरजाई मिलेंगे, लेकिन हम तो आपकी मोहब्बत में लौट के आएंगे, हमें हरजाई ना कहना क्योंकि हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत जिंदाबाद, ओम शांति।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी

0: छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल, कॉल करें 9842540111। रचा बंडा एक बार आए
1: 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabri sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

0: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
1: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
2: Dosa Bundi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: यार एक नंबर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 40, 90 AM, 99.9 FM, LG3 4 Telugu, Naira, same. मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूट्स एंड टॉक।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. Filhal kahin jaiyega nahi, sun kariye Monica ke saath radio.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD4, 4090 AM एंड 99.9 FM SD3 for Telugu, Naira FM. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यू. Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week to many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. पक्का देसी, पक्का लोकल.

The Amazing Gaana आपने enjoy किया on 101.9 FM, 99.9 FM HD 4 for 90 AM and 99.9 FM HD 3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morris Fuller, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy dosas, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 और 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु दायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंग इल्डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

ये माइंड ब्लोइंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर। वेल हमारे ट्रायंगल में फोर्थ फ्राइडे इन टाइम सेलिब्रेट होने वाला है। जॉइन अस फॉर द टीडी इज फोर्थ फ्राइडे इन जुलाई एंड गेट रेडी टू डांस एंड टैगिंग ऑन द स्क्वायर। The fabulous Jewels will be performing live at the Plaza. Slip into the rhythm and Carolina shares the smooth, easygoing partner dance on right. Here in the Southern property, match the beach music in good beat. Whether you are a seasoned dancer or just want to try, the square will be filled with the friendly faces, lively tune, and plenty of fun. Come out, grab a partner, and let the music move to you. Lal kahi jaiyega nahi, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pata desi, pata local.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमे है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान नाइन जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट नाइन जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 90 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchases, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस्मत के लिए जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

RCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SG4, 49 AM, 99.9 FM, SG3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल ट्यून्स एंड टॉप। कहा था ना मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur-chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

इस धमाल की जानकारी के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी 101.9 FM 99.9 FM LG4 for 90 AM and 99.9 FM LG3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स। ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 नॉट विक्स ओरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है। डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स ओरो स्पीडवे। एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव। फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग। Point Racing is back at North Wilkesboro. It's summer time and spectacles at one of the NASCAR's most historic tracks. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

0: माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye ga nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pakka deshi, pakka local.

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira. आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉर्निंग।

0: यार जब रणवीर सिंह ने बैक ऑफ किया धूम 4 से, आई वॉज लाइक क्यों, ही वुड बी द बेस्ट फिट फॉर दैट फिल्म, यू नो। बट अब मना बोल दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा एंड यू नो। और रणवीर सिंह के बाद में पीपल वर लाइक अब रणबीर कपूर उस फिल्म में आने वाले हैं, तो रणबीर कपूर हैज फाइनली पुट एन एंड टू द लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेकुलेशन अराउंड धूम 4। वाइल प्रमोटिंग रवायन एट सैन डिएगो कॉमिक कॉन, द एक्टर क्लेरिफाइड दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वायर फ्रेंचाइजी एंड सेड ही करंट फोकस ऑन रामायण एंड लव एंड वॉर। बिल्कुल सही है जी, जो काम कर रहे हैं आप उस पर ही फोकस कीजिए। और सुनिए आने वाले खूबसूरत गाने ओनली ऑन नायरा।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

वर्ड धनुष क्या पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले हैं? लेट्स फाइंड आउट. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो, एक्टर धनुष, हु इज डायरेक्टर ऑल्सो, हैज वंस अगेन फ्यूल्ड स्पेकुलेशन अबाउट अ पॉसिबल पॉलिटिकल एंट्री आफ्टर अर्जिंग हिज फैंस टू चैनल देयर यूनिटी इनटू पब्लिक सर्विस. एड्रेसिंग अ गैदरिंग एट अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय हिज फैंस ऑन संडे, द एक्टर एनकरेज्ड हिज सपोर्टर्स टू गो बियॉन्ड फिल्म सेलिब्रेशंस एंड एक्टिवली एंगेज इन वेलफेयर एक्टिविटीज विद इन देयर कम्युनिटीज. टेकिंग स्टेज एट द इवेंट, द एक्टर सेड, सो मेनी पीपल आर गैदर्ड इन वन प्लेस, देयर आर अ ग्रेट पावर इन दिस काइंड ऑफ यूनिटी. वी नीड टू गिव दैट यूनिटी अ पर्पस बियॉन्ड जस्ट ऑडियो लॉन्चेस and meetups. We need to engage in more welfare activities, understand the needs of the people in your area, the family living around you, and help them in whatever way possible. Do whatever help you can for them. I need to feel even prouder of you. I believe you will do it. Jo bhi ho, baat to achhi kar rahe hain. Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा एक बार आए तो रोज आए.
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

इमेजिन आपसे कोई बातें छुपाई गई हो और फिर आपको बहुत एंड में पता चले, हाउ वुड यू रिएक्ट? मतलब आप बिट्रेड फील करेंगे या फिर आप उसको जाने देंगे, क्या होगा? दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. यू नो, अकॉर्डिंग टू अनीता अडवाणी, राजेश खन्ना वॉज डीपली अफेक्टेड आफ्टर लर्निंग ही हैड बीन अडॉप्टेड, अ रिवेलेशन शी बिलीव्स चेंज्ड हिम फॉर एवर. स्पीकिंग ऑन द मेरी सहेली पॉडकास्ट, अनीता क्लेम द सुपरस्टार नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम द इमोशनल स्टॉक एंड ग्रेजुअली लॉस्ट फेथ इन पीपल. शी फर्दर अलीग दैट हिज डिफिकल्ट चाइल्डहुड फेल्ड रिलेशनशिप्स एंड बिट्रेयल्स बाय दोज क्लोज टू हिम लेफ्ट लास्टिंग इमोशनल स्कार्स एंड शेप्ड हिज पर्सनैलिटी ओवर द इयर्स. या मैन, इट कैन be really painful to know, you know, this huge secret about yourself. Okay, well, stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: यार वो लोग कैसे होते हैं जो बिल्कुल ही पब्लिक एरिया में ऐसे जोर जोर से म्यूजिक बजाकर सुनते हैं या फिर जोर जोर से रील्स देखते हैं, मुझे तो बड़े अनोइंग लगते हैं। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो एट द सैन डियागो कॉमिक कॉन यश शेयर्ड हाउ ही प्रिपेयर टू प्ले रावण इन नीतीश तिवारी रामायण। द एक्टर रिवील्ड ही वुड ब्लास्ट लॉर्ड शिवा डिवोशनल सॉन्ग्स थ्रू बिग स्पीकर्स ऑन सेट टू स्टे इमर्स्ड इन हिज कैरेक्टर, जोकिंग दैट ही स्पॉइल्ड द एटमॉस्फेयर विद द वॉल्यूम। डायरेक्टर नीतीश तिवारी टीज्ड हिम अबाउट इट, व्हाइल रणवीर कपूर एडेड दैट एवरीवन हु शॉट विद यश सेड हिज म्यूजिक कंप्लीटली चेंज्ड द एनर्जी ऑन सेट, हेल्पिंग हिम गेट टू इनटू रावण्स माइंडसेट। You know, but it's necessary. Sometimes it's यश के लिए तो ठीक है, लेकिन जो पब्लिक एरिया में है बेजबरन चलाए जा रहे हैं जोर जोर से म्यूजिक, उनका क्या करेंगे? Stay tuned for more. I'll be back on Radio Naira.
1: Radio Naira पर

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है, सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक, प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

ने बताया कि कैसे स्त्री की जो कास्टिंग है वो हुई श्रद्धा कपूर, हाउ शी केम ऑन बोर्ड. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know what? Director Amar Kaushik once revealed that Shraddha Kapoor landed her role in Stree because of her laugh. He joked it resembled that of a chudail, making her the ideal choice for the character. She can do anything, you know. वो बहुत खूबसूरत सी परी भी बन सकती हैं. वो even मतलब चुड़ैल भूतनी भी बन सकती है. She has proven. और इतनी खूबसूरत हॉट भूतनी बनी है वो स्त्री टू में. लाइक भूतनी से प्यार हो जाए. और हो भी गया था. लीड रोल को भूतनी से ही तो प्यार होता है उस फिल्म में. आई वॉज लाइक यार ऐसी भूतनी हो तो फिर लड़कियों को भी अफेक्शन हो जाए उनसे. लड़के तो खैर पूछो मत आप. बाय द वे, हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म ना अभी तक के, प्लीज गो वॉच यार. बड़े मजे की फिल्म है. अगर आपको कुछ लाइट ऐसे फन देखना है देन इट इज कम्प्लीटली परफेक्ट चॉइस फॉर यू. सो नाउ एंजॉय ऑल द अपकमिंग सॉन्ग्स टू, बिकॉज आने वाले गानों के उस पर अभी बहुत सारी बातें करनी है.

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Carrie, North Carolina 27519.
1: Dosa Bandi, authentic flavors, inspiring journeys made with
2: you
1: love.
2: Desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3838.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM Monday to Sunday। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आपकी ये मंडे की इवनिंग? वीक का पहला दिन है एंड जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था आपसे कि मोटिवेट होके थोड़ा सा करना चाहिए काम एंड ऑनेस्टली काम करना चाहिए, वो तो हम सभी लोग करते हैं। लेकिन कैसा है कि अगर आप सोचते हैं कि अरे यार मंडे आ भी गया, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ट्रस्ट मी, ये जो आपका वीक है काफ़ी बोरिंग होने वाला है। इसलिए एनर्जेटिक होकर, इंटरेस्ट दिखाकर काम जो है वो करना चाहिए। एंड ये मैं कह रहा था कि आप सब लोग अभी घर जा रहे होंगे आपके ऑफिस से, आपके वर्किंग प्लेस से, तो एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत शाम का ये पहला गाना। बने रहिएगा, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

एंजॉय किया आपने गाना एंड आप सुन रहे हैं रेडियो डायरा पर निर्वाणा नाइट्स। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी लोकल खबर से। सुबह आए तेज तूफान की वजह से रैली की लेक जॉनसन एरिया में कई पेड़ गिर गए, जिससे लैक डैम रोड को बंद करना पड़ा। मौसम की बात करें तो सुबह की आंधी के बाद अब आसमान साफ है, लेकिन उमस बनी हुई है। बॉलीवुड की तरफ रुख कर ले तो कल सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 का ट्रेलर आ रहा है एंड

बाकी तो यार सनी देओल के फैंस जो है काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं एंड अच्छा है ट्रेलर, काफ़ी अच्छा है। तो बात करते हैं लोकल खबरों के बारे में अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए गाना एंड स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, काम रहिए, चिल कीजिए यार। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड अगली खबर ये है कि गैलेक्सी कॉन का मेला खत्म हुआ, जिससे डाउनटाउन में काफ़ी भीड़ रही। वेदर की बात करें तो मौसम विभाग ने कल मंगलवार के लिए भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बारिश का तो ऐसा है कि यार कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बारिश के साथ उमस अगर हो रही है तो भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हाइड्रेटेड रहने की सलाह बहुत सारे लोग दे रहे हैं एंड रहना चाहिए। एक बोतल पानी की साथ में हमेशा रखा करो एंड पानी जो है वो समय समय पर पीना बहुत ज़रूरी है। जूस आप पी सकते हैं एंड फूड जो है वो लाइट खाना है। फ्रूट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हैं एंड बाकी लाइट फूड खाओ और लाइट फील करो, मेरा ये कहना है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना जो कि प्ले करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे लिसनर्स के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का दिस।

अपने उसूल पर जो चलना जानते हैं वही लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बटेर वाला नाइट सैंड, मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आर्य पराग। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग अपने हिसाब से सही डिसीजन लेते हैं, जिन्हें पता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, किस तरह से उन्हें एक्शंस लेनी है, तो वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप इसकी बात सुन रहे हैं, अगर आप उसकी बात सुन रहे हैं, तो ये चक्कर में क्या होता है, कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है। आपको पता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है और आप अपने वर्क को, अपनी चीज़ों को किस तरह खींच सकते हैं, ये अपना खुद को पता होता है, ना कि दूसरों को। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने दूसरों की बातों को भी सुन लेना है, लेकिन जो करना है वो अपने मन की करना है, क्योंकि वो हमेशा बेटर रहता है। इंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आज की लोकल न्यूज हमारे टेक दोस्तों के लिए है। यूएस काउंटीज ने आरटीपी 3.0 डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी है, जिससे अब यहाँ नए घर और रेस्टोरेंट्स भी बनेंगे। वेदर अपडेट यह है कि शाम ढलते ही आरटीपी एरिया में ठंडी हवाएं चलने लगी है, जो ड्राइव को और भी मजेदार बना रही है। बॉलीवुड से ये भी खबर आई है कि कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म नागजिला की शूटिंग पूरी कर ली है। सेट की कहानी यह है कि कल रात पूरी टीम ने केक काटकर इसका जश्न मनाया एंड सोशल मीडिया पर यह खबर काफी अच्छी तरह से फैल चुकी है। देखते हैं फिल्म कैसी रहती है। एंड मौसम जो है काफी अच्छा बन चुका है। इस अच्छे मौसम में एक अच्छा गाना सुनना तो बनता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा। पक्का दिल
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.